यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।

पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: It's time to join your college newspaper, Pandora's Box. Are you a good storyteller? Do you like writing? Are you a curious person? Then come write with us at Pandora's Box. It's your college paper. We encourage all majors to join. There are positions for graphic editors and business managers. Our work at PB tells the stories of York and the surrounding Jamaica community. The newspaper is a platform for all students, faculty, and local voices to learn and practice the art of news gathering. PB staff are the watchdogs for the Jamaica community and give a voice to the college's student body. Get experience for life in the real world. Report and write with us.
2: Hi, Mom. Is Claire's birthday party today? Me again, Mom. Where did I put my history book? Hi, sorry, forgot one last thing. Sometimes it's hard to concentrate. At school, I start looking out the window, and then I forget what I was supposed to be thinking about. I know it seems like I don't care, but I do. It's just difficult for me. Love you, Mom. Bye.
3: Join parents and experts at understood.org, a free online resource about learning and attention issues to help your child thrive. Brought to you by understood.org and the Ad Council.
4: 约克学院的同学们，请注意。 2026至2027 学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助， 约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持，欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程，不要等到最后一刻。尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响，立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。 如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
5: This is Shawnee Sean.
6: This is Gatay Fetty.
5: You're now listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.

0: मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या York College Student Financial Services कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: This is YCRadio.org, the voice of today's generation. I am Jerome Barrett, the Vice President of the Student Government Association.
2: Hey there, this is Mean Jin. You are listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.

0: रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意， 2026 至 2027 学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
2: Hey Lisa, how are you? It's been so long. Are you back for good? What's going on?
3: Hey, good to see you. Yes, I'm back for good and just trying to get my life back together.
2: Well, I'm so happy that you're home. It looks like things are going well. I've been seeing those pics you post of you and your family at all those fun events. What gives?
3: Oh, VetTix. VetTix gives.
2: What's VetTix?
3: VetTix is an amazing charity that gives free event tickets, like concerts, sporting events, and shows, to currently serving military vets and their families, and to the immediate families of troops killed in action. It's a really nice organization.
2: That is so nice.
3: These events have helped me feel like myself again, and all these new happy memories my family and I are making are priceless.
2: We have extra tickets sometimes. Can I donate them?
3: Yes, it's easy. Just go to vettix.org. You can give your extra tickets, and other vets like me can sign up to get them.
2: Awesome. I love that idea. What a great way to give back. I'm so glad you told me about it, and it was amazing to see you. And listen, thank you for your service.
4: Hey, what's up? It's your girl Kaya, baby, and you're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है।

0: योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दें। शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: दिस इज YCRadio.org, द वॉइस ऑफ टुडेज जनरेशन।
2: एबी, don't be like that. We can all have fun for real.
3: What? I ain't never done anything like this before. You have? Why you ain't tell me?
2: Cause I didn't want you to flip out and think I was a thot or something.
4: I'm telling y'all, my parents are out of town for the weekend for a wedding. So you guys can come to my house. We could watch a movie at first. You know, ease right into it.
3: Maybe. What about, you know, protection?
4: Come on, girl. I ain't got nothing. You got something?
3: No. I'm just saying.
2: And I know I ain't got nothing.
4: So what's good? If y'all down, I'm down.
2: Abby, come on, don't be scared. I got you.
4: Yeah, we got you, girl.
5: They may be down. Will you be down? If you are, remember to be safe. Safe is sexy.
6: Your college is looking for

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
1: This is YCRadio.org, the voice of today's generation.
2: Mom and Dad used to argue about everything, especially about Dad's drinking. It drove me crazy. It got so bad, I couldn't do my homework. I couldn't concentrate. I absolutely refused to let any of my friends come to our house for any reason. I would have been humiliated if anyone found out how much my dad drank and how loud my mom screamed at him. My family went from totally crazy to quiet, calm, and even peaceful.

योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程，不要等到最后一刻。尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
1: Your college के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA, FAFSA फाइलिंग कार्य

करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।

0: योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: What's up world, it's King Hearts. This is YCRadio.org, the voice of today's generation.
2: My name is Mikaela. When I got back from Iraq, I became pregnant and ended up homeless. Counselors helped us apply for VA supportive housing.
3: VA offers programs to help eligible veterans stay healthy, find a job, and secure or maintain safe, stable housing.
2: My life works now. I got help from VA, and now I'm on a mission to share these resources.
3: If you or a veteran you know is homeless or at immediate risk of becoming homeless, call 877-424-3838.
4: Hi, I'm Kenny Williams.
5: And Lisa Ray.
4: We'll be hosting a show called Laugh Therapy, a show focusing on the healing power of comedy, using anecdotes, discussions, and interviews. We'll show you how laughter is the medicine for the soul. Tune into YCRadio.org every Wednesday at 2 p.m. with your host, me, Kenny Williams.
5: And Lisa Ray.
4: Make sure you listen in on a free TuneIn app on any mobile device or YCRadio.org. The voice of today's generation.
6: 'Cause I ain't no joke.
7: joke. 约克学院的同学们请注意。2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
8: Hugo, quiero Hugo.
9: Mami, ¿por qué vamos a la tienda? Mami,
8: Hugo,
9: mami,
8: mamá,
9: ¿por qué vamos?
8: Hugo, Hugo,
9: mami.
8: Hugo.
10: Sus hijos tendrán diferentes necesidades en distintas etapas de sus vidas y estas incluyen el car seat. Los choques de auto son una de las principales causas de muerte en niños de 1 a 13 años. Protege el futuro de tu hijo en cada etapa de su vida. Visita safercar.gov/protegidos.
6: Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
11: What's up, guys? This is Chris Alberts, and you're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
12: What's good, y'all? It's your girl, Kay Goddess, and you are now rocking with YCRadio.org, the voice of today's generation.

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意。 2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
2: What up, what up? It's the kid out of the war. Shout out to YCRadio.org, Voice of Today Generation.
3: I started going cold turkey. Well, at least when I'm in the car.
4: I know I shouldn't do it, but it's so hard to stop. That's why I hide it from myself, so I won't be tempted.
3: I used to do it all the time. I stopped by locking it in my glove compartment.
5: My friend used to do it way too much. Now I turn it off when we're in the car.
4: My solution is simple. I just don't do it.
6: There are lots of ways to stop yourself and others from texting and driving. How will you stop? Tell us at StopTextStopWrecks.org. Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
7: Hi, my name is Larry Eaton, and I'm hosting a new show called Fireside Chats with Mr. Eaton. The show will be dealing with issues surrounding veterans, but also for all students and their educational endeavors. Please tune in to YCRadio.org every second and fourth Tuesday of the month. I look forward to speaking to you all on YCRadio.org, the voice of today's generation.
8: Nosotros compartimos un mismo deseo. Quisimos servir a nuestro país y proteger lo que amamos. Estuvimos listos para enfrentar cualquier misión. Pero para algunos de nosotros, regresar a casa era un desafío más grande de lo que esperábamos. En el ejército contábamos con el apoyo de nuestros compañeros, pero como veteranos, nos sentimos como si estuviéramos solos.
9: Para ayuda confidencial, llame 1-800-273-8255 y empuje 1. Charla con alguien en veteranscrisisline.net o mande un texto a 838-255.
10: Like us on Facebook. Go to facebook.com/ycradio.org.

0: What's up, world? It's King Hearts. This is YCRadio.org, the voice of today's generation. Y'all already know what it is.
1: You, my friend, have connections in the government. Yes, you. USA.gov, the official source for government information on thousands of topics. And like any good connection, there's no telling where it can take you. Why, one day you're getting student loan information. Next thing you know, you need job hunting tips. Today's road construction info could have you searching for telecommuting ideas tomorrow. The more you use USA.gov, the more uses you'll find for it. Passport applications, for example. They've been known to lead to a sudden interest in travel advisories. Our new mobile apps will even update you on the go. So whether you have information to get or ideas to give your government, check out USA.gov. Who knows? Lottery results today could lead to retirement planning tomorrow. USA.gov. With the right connections, there's no telling where you can go.
2: Your college is looking for a DJ. No radio station is complete without DJ, and that could be you. Come talk to us in room 1G06G. Email us at bgraves@york.cuny.edu. Call us at 718-262-5293 or visit our website, ycradio.org. Once again, email us at bgraves@york.cuny.edu. Call us at 718-262-5293 or visit our website, ycradio.org. We'll be looking forward to meeting you. ycradio.org, the voice of today's generation.
3: York College ke chhatron, dhyan de. शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
4: No matter who we are or where we come from, we all experience difficulties in life.
5: Military veterans know that sometimes it takes strength and determination to make it through.
6: Whether it's obvious physical challenges or struggles on the inside, it takes strength to ask for help when you need it.
4: I knew that I had to get support, not just for me, but for the sake of my wife and kids.
5: Talking about it has helped me feel more like myself again.
6: Honestly, it was hard to open up at first, but it's changed my life for the better.
4: Learn how veterans like us have reached out for help and hear stories of strength and recovery at maketheconnection.net.
7: Hey, what's up, man? New York is Nova Brooklyn. You are listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
1: My name is Alisi Augustine, computer science major. This is YCRadio.org, the voice of today's generation.
2: Life is full of bittersweet transitions. It's difficult to know how these changes will impact us over time. For some people, difficult transitions like retirement, divorce, or loss of a loved one can hit harder than expected and may contribute to feelings of hopelessness or even thoughts of suicide. The risk of suicide is even higher for men over 50 who served our country. Guys like me. That's why support from friends and family makes such a big difference. Every day, your actions could help save a life. Together, we got this. Learn how you can help save a life at VeteransCrisisLine.net.
3: Ladies and gentlemen of York College, it is I, Giovanni Anglin, and I have some exciting news pertaining YCRadio.org, the voice of today's generation. We are now featured on an app called TuneIn, that is T-U-N-E-I-N. And TuneIn allows you to listen to our radio show, it allows you to listen to our music, and it allows you to listen to all the things we have to offer here at YC Radio. So in order to get this app, for you Android listeners out there, you can get it on Google Play, and for all you people with Apple products, you could get it on the App Store. Thank you for listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
4: 约克学院的同学们，请注意 ,2026 至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。 立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
5: Getting your child home safely.
6: Tap your heels together three times.
5: Is just a click away.
7: There's no place like home.
5: But making sure your child is in the right seat is just one of the steps down the road to safer travels.
8: I don't know how it works.
5: Find the right seat for your little one's age and size. There's no better way to get home safely. Know for sure that your child is in the right seat.
9: How can I ever thank you enough?
5: Get all the facts at safercar.gov/the right seat. Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
10: You're listening to ycradio.org, the voice of today's generation.

0: This is Khan, and make sure you tune in on ycradio.org, the voice of today's generation.
1: Scam alert. Never share your CUNY login password or MFA. Please remember the following. Never share your passwords or MFA factors with anyone. Campus and CUNY IT will never ask for it. Do not respond to an MFA prompt if you did not initiate the login yourself. Do not click on links or open attachments in suspicious or unexpected texts and emails. If you think you may have provided your password or MFA factor, clicked on a suspicious link, or opened a suspicious attachment by mistake, please contact your campus help desk for assistance. This is a CUNY scam alert announcement.
2: Hi, I'm Kenny Williams.
3: And Lisa Ray.
2: We'll be hosting a show called Laugh Therapy, a show focusing on the healing power of comedy, using anecdotes, discussions, and interviews. We'll show you how laughter is the medicine for the soul. Tune into ycradio.org every Wednesday at 2 p.m. with your host, me, Kenny Williams.
3: And Lisa Ray.
2: Make sure you listen in on the free TuneIn app on any mobile device or ycradio.org, the voice of today's generation.
4: 'Cause I ain't no joke.
5: धोखाधड़ी चेतावनी अपना क्यूनी लॉगिन पासवर्ड या एमएफ ए कभी साझा न करें। कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें। अपने पासवर्ड या एमएफ ए कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें। कैंपस और क्यूनी आईटी आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा। यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी एमएफ ए अनुरोध का उत्तर न दें। संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें। यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या एमएफ ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें। यह CUNY की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है।
6: Hi, my name is Jerome Barrett. I am the Vice President for the Student Government Association, and you are listening to ycradio.org, the voice of today's generation.
7: Attention étudiant, your college you. Application FAFSA. AKTAP. Pour un académique 2026-2027, la CUNY a ouvri, en ce moment pour remplir PAW là. Léo remplit application W Bonnet, Saka aidé W Joanne pli aide financier fédéral, État, Aka York College of Free, tant coût subvention ou PA besoin remet. Les WAP remplit application, Azir W ou utilise information qui n'en déclaration TAC ou POUAN 2024 là. Si ou besoin assistant, équipe Student Financial Services York College la pou aidé W. Pas non bio 1h04 pour joindre répond rapide, ou soit patisip non yon non ati rempli FAFSA. Yo qui fait pouger W étape PA étape pendant tout pose zila. PA tan deni mini. Léo rempli application W bonnet, sa café yon gros 10 francs en quantité aide financier ou ka recevoir. Commence jeudi à EPI fait prochaine PA pour finance éducation ou. Pour pli information, escan KODQR qui sous de pliant FAFSA. AKTAP. La OSWA visite Student Financial Services York College. Rempli application FAFSA. AKTAP. Pour un académique 2026-2027, la jeudi amène.
8: You're listening to ycradio.org, the voice of today's generation.

0: यॉर्क कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FFSA, FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。
2: Hi, this is the Bobcat on YCRadio.org, the voice of today's generation.
3: Scam alert. Never share your CUNY login password, or MFA. Please remember the following.Never share your passwords or MFA factors with anyone. Campus and CUNY IT will never ask for it. Do not respond to an MFA prompt if you did not initiate the login yourself. Do not click on links or open attachments in suspicious or unexpected texts and emails. If you think you may have provided your password or MFA factor, clicked on a suspicious link, or opened a suspicious attachment by mistake, please contact your campus help desk for assistance.This is a CUNY scam alert announcement.
4: Hello, everyone. I'm here to tell you all about your college's Male Initiative Program, where all are welcome to come together in strengthening our purpose. The goal of this program is to contribute to the success of underrepresented populations, particularly male students. We offer programs such as YC Mentoring and workshops such as The Barbershop, where individuals can prosper and excel from.For more information, feel free to come by the office in room 3M02. You can contact us at 718-262-3772 or email us at www.york.cuny.edu/mencenter. Again, for more information, feel free to come by the office in room 3M02. You can contact us at 718-262-3772 or email us at www.york.cuny.edu/mencenter.

0: योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दें। शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग ले, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意，2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询，立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。

0: Send a love song, it's a thug song, fuck all night to the love gone. But send a love song, it's a thug song, fuck all night to the drugs gone, to the 1942 dog on, we can fuck, don't kiss, don't hug, don't hug. I'm a dog, I ain't something you should love. Oh, I'm a dog, I ain't something you should touch it, bring it, baby. Oh, it's like, no, baby girl, get naked. Do you hard rock? You take it, so you let me just stop it, you faking.
1: Your college ke chhatron, dhyan de. शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FFSA, FAFSA और TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और यॉर्क कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो यॉर्क कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FFSA, FAFSA और TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या यॉर्क कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP आवेदन पूरा करें।
2: First person shooter mode, we turning your sound to a funeral. To the just say they don't office, you better be talking about working in cubicles. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. A lot of debate in my numero, not the 3, not the 2, I'm at UNO.

योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दे, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।

0: योर कॉलेज के छात्रों ध्यान दें, शैक्षणिक वर्ष 2026 से 2027 के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन अब खुले हैं और अब अपना आवेदन पूरा करने का सही समय है। जल्दी आवेदन करने से आपको संघीय, राज्य और योर कॉलेज की वित्तीय सहायता के लिए अधिक पात्रता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, जिसमें ऐसे अनुदान भी शामिल हैं जिन्हें वापस नहीं करना पड़ता। अपना आवेदन पूरा करते समय अपनी वर्ष 2024 की टैक्स रिटर्न की जानकारी अवश्य उपयोग करें। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो योर कॉलेज की स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज टीम आपकी मदद के लिए तैयार है। त्वरित सहायता के लिए कक्ष 1804 में आए या FAFSA फाइलिंग कार्यशालाओं में भाग लें, जहां आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझाई जाएगी। अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें। जल्दी आवेदन करने से आपको मिलने वाली वित्तीय सहायता में बड़ा अंतर पड़ सकता है। आज ही शुरुआत करें और अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए FAFSA, FAFSA और TAP, TAP फ्लायर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें या योर कॉलेज स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कार्यालय से संपर्क करें। आज ही अपना 2026 से 2027 FAFSA, FAFSA और TAP, TAP आवेदन पूरा करें।
1: 约克学院的同学们请注意。 2026至2027学年的 FAFSA 和 TAP 申请现已开放，现在正是提交申请的最佳时机。尽早提交申请，有助于您最大限度地获得联邦、纽约州以及约克学院提供的各类经济资助，包括无需偿还的助学金。填写申请时，请务必使用您2024年的报税资料。如果您需要帮助，约克学院学生财务服务办公室随时为您提供支持。欢迎前往 EH04 办公室获取快速帮助，或参加 FAFSA 申请辅导讲座。我们将一步一步指导您完成整个申请流程。不要等到最后一刻，尽早申请可能会对您获得的经济资助金额产生重大影响。立即开始行动，迈出为您的教育筹集资金的重要一步。如需了解更多信息，请扫描 FAFSA 和 TAP 宣传单上的二维码，或前往约克学院学生财务服务办公室咨询。立即完成您的2026至2027学年 FAFSA 和 TAP 申请。